0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास
1: चांदनी रातें
0: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: तनिषा अरमान खान की आवाज में हक मूवी से कबूल है. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 11.6.3 एफएम. तनिषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर. अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान. ट्यूसडे का दिन सितंबर 15th. आधा सितंबर का मंथ भी निकल गया. बताओ ऐसे दौड़ रहे हैं ना वक्त, तो जैसे पता नहीं कहाँ पहुँच रहे हैं ऐसे. और यहाँ हमें स्ट्रेस हो रहा है कि भाई साल खत्म होने वाला है, नया साल आ जाएगा, फिर से यू नो वील टेक ऑल द रेजोल्यूशंस एंड स्टफ. और नहीं हो पाएगा, पर जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. एनीवे बताइए कैसा था कल का दिन और अभी क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या हाल चाल है. एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दो यार.
1: लग रहा है
0: सिंह की आवाज में ये खूबसूरत गाना मेट्रो इन द नो से. एंड टू ऑल द पीपल हु आर ऑफ टू वर्क ऑलरेडी, या फिर निकलने वाले हैं, रेडी हो रहे हैं, और या फिर बच्चों को रेडी कर रहे हैं स्कूल ड्रॉप करने के लिए, ड्राइव केयरफुली. और आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा. ऑल्सो यू नो आज का दिन एकदम बढ़िया जाने वाला है, इस ही थॉट प्रोसेस के साथ अपना दिन शुरू कीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए. ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यार. जी ये सिलसिला तभी तो आगे बढ़ेगा, वरना सिर्फ मैं ही बात करती रहूंगी, आपके बारे में मुझे पता ही नहीं चलेगा. तो जब तक आप मैसेज नहीं करेंगे यहाँ पे मुझे, ये सिलसिला कैसे एक तरफा से दो तरफा होगा, बताओ मुझे. लव दिस ट्रैक. क्रेजी मूवी इट वॉज है मेरे ब्रदर की दुल्हन, बट द साउंड ट्रैक वॉज अमेजिंग. कमाल, रफी साहब की आवाज में ये भी आने वाला है. फिलहाल सुनते हैं पिया घर आया होम कमिंग फ्रॉम आवर अपन टू, और इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का. 3311 1063.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Tanisha.
1: मेट्रो इन दिनों से कायदे से ब्यूटीफुल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज में, और यार अरिजीत सिंह की आवाज में जो सुकून है ना उसकी बात अलग है। वो इंसान ऐसा लगता है कि कोई उसको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे पढ़ रहा है और उसके आवाज में एंड द वे ही इज सिंगिंग लाइक यू नो निकल रहा है फ्लॉलेसली एकदम। So it is beautiful. I am just mesmerized by his voice. और फिर ये गाना तो बहुत ही खूबसूरत है, आवाज के साथ साथ लिरिक्स भी बहुत कमाल है। You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर, and we've got messages over here. आइए बढ़ते हैं। नाजनी जी का मैसेज है, कहती है, मॉर्निंग इज गॉड्स वे ऑफ विस्परिंग वन मोर टाइम, मेक अ डिफरेंस, touch your heart, encourage your mind, inspire your soul, enjoy the day, good morning. Indeed, every new day is a new beginning for all of us. ठीक है, कल क्या हुआ वो कल पे छोड़ दो, ओके काम बच गया है तो वो कंप्लीट कर लेना, वरना मैनेजर से डांट पड़ेगी। ये मत कहना तनीषा ने कहा था कल का कल पे छोड़ दो, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। बाकी यू नो कल का स्ट्रेस आज कैरी फॉरवर्ड करके जाना डजंट मेक सेंस। हाँ जी, एंड अवराज जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है, शशिकांत पाटिल जी का मैसेज है, कहते हैं मे योर डे बी फिल्ड विद, नो दिस इज ओल्ड वन, ऊपर स्क्रोल हुआ था, सॉरी कर दो यार, सॉरी मैं कर रही हूँ, आप माफ कर दो। सो शशिकांत पाटिल जी कहते हैं, गुड मॉर्निंग मीन्स वी नीड टू थिंक एंड थैंक गॉड ही गेव अस अनदर डे टू लिव, टू होप एंड प्रे टू हिम, अनदर डे टू एंजॉय हिज ब्लेसिंग्स। इन डीड द सेम थिंग विच वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। एंड वी हैव जुल्फी जी का मैसेज, लिविंग विद नेचर टीचेस अस पेशेंस, ब्रिंग्स अस पीस एंड रिमाइंड्स अस दैट सिंप्लिसिटी इज ट्रू हैप्पीनेस। यस, बींग ग्राउंडेड एंड इन टच विद नेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सम काइंड ऑफ पीस इट ऑल्सो गिव्स। And Santu ji ka bhi good morning aaya hai, wishing you a day as bright as your smile, may this week be everything you hoped for. Thank you so much Santu ji, and to everybody out there who have messaged. Yaar sare padhna thoda mushkil ho jata hai kyunki gaane intezar kar rahe hote hain, to cool song of the hour ko wait na karwate hue chalte hain, aage badhte hain, kuch der mein laut kar aati hu. Sunte rahiye Radio Olive, jiyo bindaas. Cool song Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
2: सर क्या पर ये बात है, कुसाम awesome.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास
2: रेडी
3: टू लर्न
2: टू प्ले टू ग्रो
4: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।
3: या वांट टू फील दैट?

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power: Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड it today.

0: वह जान के आवाज में तनु एज मनु से यूं ही खूबसूरत गाना ऑल ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा है आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर वेदर इट वॉज ओके जब मैं घर से निकली थी ऑफिस के लिए आज पर जब ऑफिस तक पहुंची तो फिर से माहौल वैसा ही एकदम गर्म हो चुका था सो इट इज 34 डिग्रीज राइट नाउ एंड इट फील्स लाइक 40 डिग्रीज तो आप समझ ही सकते हैं विंड 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है एंड हाईएस्ट टेम्परेचर टुडे विल बी 41 डिग्रीज लोएस्ट 31 जा सकता है रात तक अपना ख्याल रखें अगर हवाएं तेज हैं तो देखो एलर्जीज वगैरह ट्रिगर हो जाती है बिकॉज डस्ट आ जाती है उसके साथ सो प्लीज मास्क साथ रखा करिए अपने और स्टे हाइड्रेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा मामला ऐसे ठीक हो रहा है बट इट इज वेरी स्लो तो 15 सितंबर का जो कहा था कि भाई 15 के बाद तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी एकदम से ऐसे मैजिक तो है नहीं कि बस चुटकी बजाए और सब ठीक नहीं The weather will take time. Eventually it'll get colder. But फिलहाल जो भी है उसके हिसाब से हमें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है ठीक है क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो मेरी जान आपकी सेहत को कुछ होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ठीक है सो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड लाइट खाना खाइए पानी अपने साथ हमेशा रखिए जब भी बाहर जा रहे हैं तो फ्रूट्स खाते रहिए और कल ना एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि एक दिन में एक फ्रूट खाना तो इम्पॉर्टेंट है वो खा रहे हो ना आप तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए सो इफ यू वर नॉट कंज्यूमिंग फ्रूट्स प्लीज डू दैट ठीक है मैंने भी शुरू किया सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Shah.
1: True movie से नैना in the voice of दिलजीत दोसांझ only on Radio 106.3 FM. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. जी दिस ट्रैक इज कमिंग अप योर वे इन अ बिट. और इस घंटे में जो गाने चलने वाले हैं उनकी वर्सेटैलिटी आपको मैं सुनाती हूँ जरा.

0: such a cute track it is, yeah.
1: Husan tera toba, toba, toba, toba. Husan tera toba, toba, toba, toba.
0: Vicky Kaushal ke wo smooth moves. Oh my God, beautiful.
2: Baithi kithe badla to dur honi hai. Mere vangu vi majboor honi hai.
0: इंस्टाग्राम से वायरल होके जो ये गाना पहुंचा है लोगों की प्लेलिस्ट में, कमाल।

0: कोई बात नहीं, नाच नहीं सकते तो क्या हुआ, हम फिर भी नचा लेंगे, स्ट्रेस नहीं लेने का, ठीक है। ये सारे कमाल गाने इस घंटे में आप सुनने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक डायलॉग सुनाऊंगी और आपने मुझे गेस करके बताना है, पहचान के बताना है कि वो डायलॉग कौन सी मूवी का है, ठीक है। जरा गौर से सुनिएगा। नहीं, ये तो गाना चला दिया मैंने, गलती हो जाती है इंसान से, ठीक है। अब डायलॉग सुनिए।
1: ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है।
0: सही बात है, काफी आइकॉनिक मूवी और बहुत ही इसके ऊपर बुक से एक्चुअली यू नो इंस्पायर होके ये मूवी बनी थी। सो बताएं कौन सी मूवी है ये, एक बार फिर से सुनाती हूँ।
1: ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है।
0: हाँ जी, तो कौन सी मूवी का डायलॉग है ये एंड कौन से एक्टर हैं जो ये डायलॉग बोल रहे हैं, ये भी जानना चाहूंगी। 3311 1063 पर फटाफट से आ जाओ, मैसेज कर दो और सुनते रहो रेडियो ऑल ऑफ टू।

0: तुम आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan. September 18th, 7 PM. And bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Saleem and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
3: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं. यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा.
4: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा. रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज.
3: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें. धरोहर मिस मत करना.
5: सत श्री अकाल जी, मैं हां हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: तनिषा
1: गर्वित हंसिका और प्रियांश के आवाज में तेरा हुआ साहिबा फ्रॉम द मूवी मुसाफिर कैफे नो नॉट मूवी द सीरीज यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर और मैंने आपको एक डायलॉग सुनाया था और पूछा था कि कौन सी मूवी से है और कौन सा एक्टर इस डायलॉग को डिलीवर कर रहा है
2: ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है
1: The iconic movie Three Idiots. Yes, that is the correct answer. And we have got quite a lot of messages over here. Adnan ji ka message hai. And Saak the King, am I reading your name right? Maybe it's short for something. Then kisi ka naam Arabic mein likha hai. Bhai, main nahi pad paungi. And yes, Madhavan. Oh my God, love Maddie. And along with that, kisi ka naam pe emoji hai again. SK ka bhi message hai. Then there is Arijit. Then there is... Sahar it's a very long name please mujhe teach kare apna naam sath mein mujhe shri ka bhi message hai sayed ji ka message hai vikrant is there mohammed is there then reena is there ap ka message hai thank you so much guys you guys deserve an amazing track isi baat pe toba toba bhej rahi hu karan aujla ki awaaz mein bad news se aur agar waqt hai बाय द वे मुझे कुछ देर पहले एक मैसेज आया था यार मैं भूल ही गई उसके बारे में तो बात करना सो सामा जी का मैसेज आया था जो मैंने राता लंबिया चलाया था उन्होंने ऐसे वीडियो बना के भेजा थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग सच ब्यूटीफुल ट्रैक इन द मॉर्निंग माय प्लेजर सर सो इन केस एनी ऑफ यू एवर यू नो मेक अ वीडियो वाइल ड्राइविंग और जस्ट लिसनिंग टू अस एंड पुट इट ऑन योर सोशल्स स्टोरी पर डालो हमें टैग जरूर करना radioolive.qa को ठीक है हमें अच्छा लगता है वो देख के ना कि अरे शेयर कर रहे हैं अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स So it just makes our day. So in case you do that, do not forget to tag us. Sending toba toba. अगर इसका step आता है तो करके भेज दो. बता दो. Video भेज दो मुझे. मैं किसी के साथ share नहीं करूँगी. पक्का वाला promise है मेरा. मुझे तो नहीं आता तो मुझसे मत कहना. ठीक है? जबरदस्त hit your way. Stay tuned on Radio Bindaas.
0: अब सुनिए Olive का जबरदस्त hit.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: तनिषा
1: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में बड़ा सुंदर गाना, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, बहुत ही सूदिंग सा ट्रैक है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। और भाई कतर में क्रेजी चीजें होती रहती है यार, जो एडवांसमेंट्स हमें यहाँ मिल रहे हैं वो क्या कहीं और मिल रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं ना आपको, आपको सब कुछ यही मिल रहा है। जी हाँ, सो मिशर प्रॉपर्टीज ने लॉन्च कर दिया है राशिद उनका AI पावर्ड डिजिटल कंपेनियन, जो कि आपके लिए चीजें मिशर डाउनटाउन दोहा में और भी आसान कर देगा। सो इट इज़ अ 24/7 डिजिटल कॉन्सियर्ज, ठीक है, वो राउंड द क्लॉक आपको मिशरप डाउनटाउन में मिलने वाला है और उसके 15 इंटरैक्टिव स्मार्ट कियोस्क प्लेस किए गए हैं थ्रू आउट द डाउनटाउन एंड इट कैन हेल्प यू फाइंड रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, लोकेशन एंड स्पेशली जो टूरिस्ट हैं जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आपको रास्ता बताने में भी मदद करेगा ये एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन भी देगा अलॉन्ग विद दैट। पार्किंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए रेसिडेंट्स को तो उसके बारे में भी बताएगा, फैमिलीज को हेल्प करेगा इन डिस्कवरिंग अपकमिंग इवेंट्स एंड एक्टिविटीज एंड इट कैन इंटरेक्ट इन बोथ अरबिक एंड इंग्लिश। यस, सो इसे 50 वेबसाइट्स और ऐप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन जस्ट आस्क राशिद एंड इट विल हेल्प यू, इजी पीजी, सही है ना यार। एंड और ये बस यहाँ ख़त्म नहीं होता है, अभी ये यू नो और इवॉल्विंग स्टेज में है। सो दिस इज़ द फेज वन, इसके बाद दे आर प्लानिंग कि इसमें इवेंचुअली यू नो इवेंट बुकिंग का ऑप्शन भी आ जाए कि आप उसे बोलो और ये आपके लिए इवेंट बुक कर दे एंड पार्किंग के पेमेंट्स भी इसके थ्रू हो जाए सो दैट और ज़्यादा आसानी हो जाए। डाइनिंग रिजर्वेशंस और दूसरे तरह के ट्रांजेक्शन्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट कैन हेल्प यू विद इवेंचुअली इन फ्यूचर, दैट्स द प्लान। सो ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका है तो अगर आप मिशरप डाउनटाउन जाते हैं तो ज़रा चेकआउट कीजिएगा, राशिद से बात बात करके बताइएगा कि सब ठीक है कि नहीं, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट समथिंग यू नो व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड एंड कुछ आपने मिस आउट कर दिया हो सोशल मीडिया पे ऐसे स्क्रॉल करते हुए या फिर यू नो कहीं जाना है आप, कोई पर्टिकुलर स्टोर ढूंढ रहे हैं, कोई शॉप ढूंढ रहे हैं, कोई कैफे ढूंढ रहे हैं, रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, राशिद इज़ देयर फॉर यू। जी हाँ, सो दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट कतर, कि सब चीज़ों को साथ में लेकर पैरेलली कैसे आगे बढ़ा जाए यार। मतलब अपना रिच कल्चर और हेरिटेज तो हमारे साथ लेकर जा ही रहे हैं हम, पर वी आर यू नो वेरी स्टेडिली इवॉल्विंग विद द टाइम्स, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में हम बिल्कुल पीछे नहीं है। सो दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड जी विद अस।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: रेडी
3: टू लर्न
2: टू प्ले टू ग्रो
4: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
5: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
8: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7777000525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
3: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं, सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

0: दस मॉर्निंग अरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7777000525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
3: Hi there friends, this is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm the number one. Bindas Morning.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड today.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. I absolutely love this track. एक दीवाना तो मूवी से होसाना सुना आपने. And अभी मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि अगले घंटे में we are gonna have an amazing conversation with Manal Aster Healthcare से. And she is the marketing manager over there. बहुत सारी amazing चीजें वो हमें बताने वाली है. So do not miss out that conversation. Along with that, एक छोटा सा वीडियो उनका ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया है हमारे सोशल मीडिया पर, तो आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं. और साथ में जा ही रहे हैं तो radioolive.qa को फॉलो कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कर रखा है तो बढ़िया ही है, फिर तो आप बेस्ट हो यार, वही तो बात है आपकी. बाकी अलॉन्ग विद दैट हमें यू नो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक सब जगह फॉलो कर लो सो दैट आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो. Love this track. Kya vibe hai yaar iski. Fana movie se ye bhi aa raha hai aur saath mein mausam se ye khoobsurat gana.
1: O rabba main to mar gaya hoy. Shadai mujhe kar gaya hoy.
0: Sunte rahiye Radio Olive 106.3 FM. Jio bindaas meri jaan.
2: Cool song.
0: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
3: सर क्या पर ये बात है.
4: ओके रेडी. पुचन कैचन पुचन कैचन.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power: Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

शान और कैलाश खैर साहब की आवाज में चांद सिफारिश फ्रॉम द मूवी फना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और भाई कोरिया का जो वर्क कल्चर है इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. वैसे नॉट जस्ट कोरिया, जापान में भी यही चीज़ है कि अगर आप अपने ऑफिस में नैप ले रहे हैं देर इज फर्स्ट ऑफ ऑल फैसिलिटी टू टेक अ नैप, ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम के लिए. ऐसे नहीं कि आप पूरा दिन बस गए हो और सो जाओ वहाँ जाके, नो नॉट दैट. बट या इन बिटवीन इफ यू आर फीलिंग वेरी यू नो ऐसे स्लम्प में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, टायर्ड फील कर रहे हैं, तो यू कैन टेक अ स्मॉल नैप एंड उसको साइन माना जाता है दैट यू आर वर्किंग हार्ड, कि आपको बॉडी को थोड़ी देर के लिए शट डाउन करने की ज़रूरत पड़ रही है. That's a good thing. And Korea mein, there are few offices, what they are doing, they have come up with this policy ki aap roz, you know, either you do workout or you do, you know, walk par jao, jog par jao, whatever you are doing, there should be some physical activity. Aur uska track aap har roz aakar apne manager ko do. ठीक है, फॉर एन एंटायर टू मंथ्स आई थिंक देयर इज दिस लिमिट, कि अगर आपने कंटिन्यूसली दो महीने ये चीज़ करी है एंड यू आर मेकिंग एफर्ट्स टू कीप योरसेल्फ फिट, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ टू मंथ्स यू विल गेट समथिंग रियली गुड लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द ऑफिस, बिकॉज यू आर वर्किंग इन द ऑफिस ऑल्सो एंड देन यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ ऑल्सो. सो इस बैलेंस को बना के रखने के लिए द ऑफिसेज आर गिविंग सम रियली गुड गिफ्ट्स एंड गिफ्ट्स लाइक यू नो आईफोन एंड ऑल. ऐसे कुछ छोटा मोटा नहीं कि वो क्या कैटल पकड़ा दिया है, नो नॉट लाइक दैट. गुड गिफ्ट्स पीपल आर गेटिंग, सो यू नो इट इज़ जस्ट मेकिंग देम एक्साइटेड कि ओके ठीक है आई नीड टू वर्क आउट. वेदर दे आर टायर्ड और नॉट दे हैव टू मेंटेन द स्ट्रीक, जैसे हम स्नैपचैट के लिए भागते हैं वैसे उन्हें अपनी जो फिटनेस की स्ट्रीक है उसको मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए दे आर वर्किंग अ लॉट एंड साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रख पा रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव. वैसे भी बचपन से हमारे साथ ही हुआ है ना कि बेटा अगर तुम इतने मार्क्स लेकर आओगे तो मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, यू नो पेरेंट्स ने भी यही चीज़ें करी हमारे साथ. सो आई थिंक वो कंडीशनिंग वैसी बन गई है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ ओनली, उसके लिए भी अगर आपको ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है तो वो करने का मज़ा जो है वो और डबल हो जाता है और आई वुड से एक्साइटमेंट डबल हो जाती है बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. दोनों चीज़ें आप ही के पास आ रही है, सेहत भी आपकी बेहतर हो रही है, गिफ्ट भी आपको ही मिल रहा है. तो दिस इज नाइस, आई लाइक दिस आइडिया. आई ऑल्सो लाइक द ट्रैक विच आई एम सेंडिंग योर वे, शाहिद माल्या की आवाज़ में, रब्बा मैं तो मर गया. ब्यूटिफुल गाना ओनली ऑन रेडियो.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
2: सुनिए हर सुबह 6 से 10 RJ Nisha को बिंदास मॉर्निंग में.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड सफारी मॉल में.
5: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million rials विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड it today.

0: तनिषा हार्डी संधू की आवाज में बिजली बिजली ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है
1: ये है चलती फिरती डिक्शनरी
0: सो आज का जो वर्ड है ना इट इज अ फीलिंग विच वी ऑल फील आफ्टर यू नो घर पे शादी हो या फिर बहुत सारे गेस्ट आए हो कोई ओकेजन हो एंड यू ऑल आर टुगेदर समवेयर इवन स्कूल्स में यू नो जब एनुअल डेज होते थे उसके बाद भी यही फील आती थी यार एंड ऑफिसेस में अगर कोई सेलिब्रेशन चल रहा है यू नो यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग एंड देन उसके बाद जब वो सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाए या फिर कोई इवेंट होने वाला है और आप उसके केओस में लगे हुए हैं तैयारी में लगे हुए हैं एंड देन व्हेन द इवेंट इज ऑलरेडी डन उसके बाद जो फीलिंग आती है उसको कहते हैं किनोप्सिया किनोप्सिया ओके द स्पेलिंग इज KENOPSIA किनोप्सिया बेसिकली एक वो अनसेटलिंग सी फीलिंग कि यू नो अभी तो भरा हुआ था यहाँ पे इतने सारे लोग थे नाउ देयर इज नोबडी एंड यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग अलोन कि जैसे घर पे गेस्ट आते हैं सो वो वीकेंड के लिए आए हैं वो एक दो दिन रुके हैं और वो उसके बाद चले गए हैं देन यू सडनली स्टार्ट फीलिंग कि भाई घर एकदम से खाली हो गया है यार एंड वेन एवर आई एम लीविंग होम ना लाइक मैं इंडिया जाती हूँ मम्मी पापा के साथ रहकर आ रही हूँ कुछ दिन और जब मैं वापस आ रही होती हूँ आई यूज़ टू फील दिस कि यार मैं तो जाके अपने काम में लग जाऊँगी इनकी लाइफ तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी बस एक पार्ट मिसिंग है वो कि मैं एंड हाउ दे मस्ट बी फीलिंग दे ऑल्सो मस्ट बी गोइंग थ्रू किनोप्सिया एंड दैट इज सच अ sad feeling yet there is this positive enthusiasm ki bhai jaldi dobara milenge to have that you know amazing togetherness wala feeling aur warmth that love saath mein badhiya memories banayenge but kinopsia to sabko hota hai when was the last time you felt this kinopsia ye bataye mujhe 3311 1063 par stay tuned to radio olive sending mascara for you to you bindas meri jaan
1: Radio

0: Ready? To learn.
1: Yes.
0: To play.
1: Absolutely.
0: To grow.
1: With Maserati.
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: guys, this is Jonita Gandhi. Radio Olive, I'm the number one. You are listening to me on Radio Olive. Gio Bindas. Radio
1: Olive, I'm the number one. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ हैं आप और मेरे साथ हैं मनाल इस वक्त रेडियो ऑल 106.3 एफएम सुन रहे हैं आप बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं एंड वी वर टॉकिंग अबाउट एस्टर डीएम हेल्थ केयर उनकी जर्नी उनके मोटो एंड ऑल द अमेजिंग कैंपेन्स दे हैव बीन डूइंग कुछ बहुत कमाल इनिशिएटिव्स भी हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए तो मनाल प्लीज बताएं हमें उस इनिशिएटिव के बारे में
2: वन ऑफ द थिंग्स आई लाइक टू से इज अबाउट आवर सीएसआर विंग वी हैव 100,000 वॉलंटियर्स इन एस्टर वॉलंटियर्स राइट नाउ सो एस्टर वॉलंटियर्स इज आवर सीएसआर विंग विच इज स्प्रेड अक्रॉस 22 कंट्रीज एज Hospital, we are there in 8 countries, but as Aster volunteers, we are there in 22 countries.
1: That's huge.
2: We have 82 mobile medical clinics. So basically, wow. We have one in Qatar. It's a full-fledged mobile clinic inside. Mm-hmm. And we go to different areas, different communities, different associations, and we provide free health checkup to the community in Qatar.
1: Amazing. And where can people connect with you guys for this?
2: Go and follow our Aster DMH Qatar account in Instagram and Facebook. You can contact us through there.
1: Great, great. Thank you so much, Manal. That was such an amazing conversation. And kafi kuch, you know, behind the scenes wali cheeze hame samajh mein aayi. How marketing works in healthcare, ye pata chala. And how Aster prioritizes its patients, its people's comfort and health on top of everything. That's absolutely beautiful. Thank you so much for your time. And you guys have an amazing day. Stay tuned to Radio Olive. Jio, Bindas.

गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

So, कभी-कभी ना दिन की शुरुआत किसी बड़ी खबर से नहीं बल्कि अच्छी बातचीत से होनी चाहिए, जहां कोई आपको ये ना बताए कि आज आपको क्या करना है, बस कुछ ऐसी बातें आपके सामने रख दी जाएं जिन्हें सुनकर आप एक पल के लिए रुकें और सोचें, अच्छा मैंने इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं। सो आज का सफर कुछ ऐसा ही है, कहीं फैशन हमें बताएगा कि पुराना कभी सच में पुराना नहीं होता, कहीं किताबें हमें उन लोगों से उन जगहों तक लेकर जाएंगी जहां शायद हम खुद कभी नहीं गए हैं, बॉलीवुड से एक दो ऐसी बातें निकलेंगी जो सिर्फ फिल्मों की नहीं हमारी अपनी ज़िंदगी की भी हैं, और बीच में एक ऐसी कहानी भी है जहां प्यार पैसा और भरोसे का हिसाब बिल्कुल रुपए तक पहुंच गया है, मतलब करोड़ों रुपए तक पहुंच गया है। सो आज हम हेडलाइंस नहीं बात करेंगे, हम कहानी के पीछे छिपी एक छोटी सी बड़ी जो भी बातें होंगी वो सब करेंगे, क्योंकि अच्छी बातचीत वो नहीं होती जिसमें सिर्फ आपको नई इन्फॉर्मेशन मिले, अच्छी बातचीत वो होती है जो घर जाते जाते आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ कर जाए। सो चलिए आज के दिन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आप जहां हैं वहीं रहिए, क्योंकि आपके लिए सुपरहिट बातें और सुपरहिट गाने लेकर आ गई हूं मैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

बहुत ही वायरल खबर लेकर आई हूँ। कहते हैं प्यार में हिसाब नहीं होता, लेकिन सिंगापुर की एक कोर्ट केस में शायद इस लाइन को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया है। सो एक इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन है, अपनी फॉर्मर गर्लफ्रेंड के साथ उन्होंने मतलब जितना भी जो भी उनका लेन देन था उसमें उन्होंने लीगली केस किया और सारे पैसे ना वापस मांग लिए, विच वॉज समवेयर अराउंड 3.5 करोड़ इन इंडियन करेंसी। अब कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। रिलेशनशिप के टाइम पर उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया, महंगे गिफ्ट्स थे, एक्सपेंसिव चीज़ें थी। उनका कहना था कि सिर्फ गिफ्ट्स नहीं थे बल्कि कुछ लोन भी दिया था उन्होंने। लेकिन ब्रेकअप के बाद अब मामला ये है कि वो उन्होंने सारे पैसे ना क्लेम किए, वापस मांगे। अब जो भी एविडेंस थे उसमें गिफ्ट्स, रिलेशनशिप के टाइम पर किए गए वॉलंटरी एक्सपेंसिव, ये सारी चीजें थी। अब असली सवाल ये है कि रिलेशनशिप जो है वो, क्योंकि हम प्यार में अक्सर कहते हैं ये तुम्हारे लिए है, उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, लेकिन अगर रिलेशनशिप खत्म हो जाए तो क्या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पर भी हमारा कोई क्लेम होना चाहिए? शायद इसी वजह से प्यार में ना सिर्फ इमोशंस नहीं, फाइनेंशियल क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार में दिया हुआ गिफ्ट अगर बाद में डेट बन जाए तो प्रॉब्लम मुझे लगता है मनी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की होती है। सो आपको क्या लगता है, सो आफ्टर रिलेशनशिप एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वापस मांगना सही है या बिल्कुल नहीं? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। सो यू टेल मी कि क्या करना चाहिए। 3311106 इज माय नंबर। Stay tuned, Jio Bindas.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास रेडी
2: टू लर्न
1: टू प्ले टू ग्रो
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
4: मिल्क चीज योगर्ट लवली
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।

कपड़े हम पहनते हैं लेकिन डिजाइनर के लिए वही कपड़ा एक आइडिया होता है और शायद इसी वजह से सब्यसाची मुखर्जी का एक रीसेंट स्टेटमेंट फैशन से कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड के लिए कस्टम क्लोथ्स बनाने से बचते हैं क्योंकि सेलिब्रिटी और स्टाइलिस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कभी कभी डिजाइनर के ओरिजिनल क्रिएटिव विजन को ना कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अब जरा सोचिए, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपके पास एक विजन है, आप जानते हैं कि ये चीज़ कैसी दिखनी चाहिए, लेकिन सामने वाला कहता है यहाँ थोड़ा और ग्लैमरस कर दो, यहाँ कलर नहीं चाहिए, यहाँ नेकलाइन बदल दो, इंस्टाग्राम पर अच्छा दिखना चाहिए, और धीरे धीरे आपकी बनाई हुई चीज़ आपकी कम और उनकी ज्यादा लगने लग जाती है। अब यही कॉन्फ्लिक्ट ना हर क्रिएटिव प्रोफेशन में होता ही है, राइटर और एडिटर के बीच में, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में, शेफ और कस्टमर के बीच में, डिजाइनर और सेलिब्रिटीज के बीच में भी, क्योंकि क्रिएटिविटी बेचते ही एक सवाल पैदा होता है, कंट्रोल किसका होगा। और शायद लग्जरी की असली डेफिनेशन सिर्फ महंगा होना नहीं है, लग्जरी का एक हिस्सा है किसी क्रिएटर को अपनी विजन के साथ खड़े होने के फ्रीडम देना। सो यू टेल मी कि आपके हिसाब से आर्टिस्ट को क्लाइंट की पसंद माननी चाहिए या कभी कभी कॉन्फिडेंटली कहना चाहिए नहीं, ये मेरी कला है, इसमें मैं अपने तरीके से काम करूंगा। सो इसीलिए जो सब्यसाची मुखर्जी हैं वो बेसिकली ब्राइड्स के लिए या फिर यू नो सेलिब्रिटीज की पर्सनल जो चीज़ें होती हैं उनके लिए ज़्यादा डिज़ाइन करते हैं, बॉलीवुड के लिए वो मना कर देते हैं। यू टेल मी कि आपको क्या लगता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान। Stay tuned, Jio Bindaas. Yeah.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
3: September 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर

0: यार फैशन की दुनिया में ना एक बहुत ही मजेदार बात है। कुछ भी पूरी तरह से आउट नहीं होता, बस थोड़े सालों के लिए गायब हो जाता है और फिर अचानक वही चीज रनवे पर लौटती है और लोग कहते हैं कि ओह माय गुडनेस, न्यू ट्रेंड। इस बार कमबैक हुआ है स्ट्रिप पैंट्स का। अब वही पैंट्स जिनके नीचे एक स्ट्रैप होता है जो पैर के नीचे जाकर अटकता है, आज के फैशन रनवे में इसका नया जो वर्जन है वो वापस दिखाई दे रहा है। लेकिन असली कहानी पैंट्स की नहीं है, कहानी है हम नॉस्टैल्जिया को फैशन क्यों बना देते हैं। क्योंकि हमारे लिए कपड़े ना सिर्फ कपड़े नहीं होते। एक पुरानी जैकेट आपको स्कूल की याद दिला देती है, एक पर्टिकुलर परफ्यूम किसी इंसान की याद दिला देता है और कोई पुराना फैशन ट्रेंड अचानक आपको आपकी टीनेज ईयर्स की याद दिला देता है। इसीलिए फैशन सिर्फ क्या अच्छा दिख रहा है ये सवाल नहीं है। कभी कभी फैशन पूछता है आपको याद है, और शायद इसी वजह से डिजाइनर्स ना बार बार पास्ट में जाते हैं क्योंकि नया बनाने के लिए कभी कभी पुराना तो खोलना पड़ता ही है। सो यू टेल मी कि आपके वार्डरोब में कौन सी ऐसी पुरानी चीजें हैं जो आज भी आप देखकर कहते हो कि ये वापस ट्रेंड में आ जाए तो मैं फिर से पहनूंगी, और कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप चाहेंगे कि प्लीज इसे वापस मत लाना ट्रेंड में। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
2: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर दो से तीन मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 2026 कम्युनिकेट कनेक्ट एंड कॉन्कर

हमारे वार्डरोब में ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि नहीं बदलेंगे, चाहे वो व्हाइट शर्ट हो या फिर बेसिक ब्लू डेनिम्स हो, और टाइट्स ब्लैक, बस ब्लैक, लेकिन फैशन कह रहा है। इतना डर क्यों रहे हो कलर से? फॉल 2026 में कलर टाइट्स और फैशन कॉन्वर्सेशन में है प्लम, बर्गंडी, मस्टर्ड, ऑलिव, ऐसे कलर्स, मतलब बहुत ही अमेजिंग कलर्स। अब पहली नज़र में ये बस फैशन ट्रेंड लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। हम धीरे धीरे सेफ ड्रेसिंग से एक्सपेंसिव ड्रेसिंग की तरफ जा रहे हैं। पहले सवाल होता था क्या सबको पसंद आएगा, अब सवाल मतलब फैशन से है क्या ये मुझे रिप्रेजेंट कर सकता है। और ये डिफरेंस ना बहुत बड़ा है, क्योंकि पर्सनल स्टाइल का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हो। पर्सनल स्टाइल का मतलब होता है आपके कपड़ों में आपकी पर्सनालिटी दिखाई दे। कभी पूरा आउटफिट सिंपल होता है, लेकिन एक ब्राइट पेयर ऑफ शूज ना सब कुछ बदल देते हैं। यू नो, आई हैव वेरी ब्राइट पेयर ऑफ शूज जो कि पिंक कलर के हैं, वो भी नियॉन पिंक। कभी प्लेन ड्रेसेस होती हैं और सिर्फ इयररिंग्स उसका पूरा मूड चेंज कर देता है। यानी स्टाइल लाउड होना जरूरी नहीं है। सो यू टेल मी कि ब्लैक आप हमेशा पसंद करते हो या फिर ऐसे प्लम, बर्गंडी, ब्लू, इन सब कलर्स को भी आप मौका देना चाहोगे? बाय द वे, आई रियली लाइक कलर्स। व्हाट्सएप पे अपना आंसर और कलर दोनों बताना। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोर फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल स्लो कुक्ड मंडी परफेक्टली स्पाइस प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी नो नॉइस नो ड्रामा जस्ट सी फूड डन राइट बीबीक्यू फिश क्रैब्स प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस सर्व विद प्राइड दानातल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोर।
2: नमस्कार मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।

0: सो हर किताब ना आपको कुछ ना कुछ तो सिखाती ही है। सो बेसिकली मैं एक किताब पढ़ रही थी जो कि मैरिलिन जेम्स की बुक है। ये किताब आपको सिखाती है कि कई सारे लोग जो है वो आपके सामने रहते हुए भी आपसे दूर चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि उसके बाद वो कौन बन गए। सो कुछ लोगों की ये किताब थी जिसके बारे में मैं पढ़ रही थी। मैंने इस किताब को अभी पूरा पढ़ा नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही थी जो आपके साथ शेयर करती हूँ। सो क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इंसान को चेंज कर देते हैं, मतलब चाहे वो कुछ इंसिडेंट्स हों या कोई कॉन्वर्सेशन हो, आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब बहुत डीप तक चला गया अब ये। सो नाम, चेहरा, आवाज़ सब वही रहता है, लेकिन अंदर से कुछ चेंज हो जाता है और अक्सर दुनिया उस बदलाव को समझती नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन शायद वो पहले जैसा ही रहना चाहता हो या नहीं रहना चाहता हो, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को इरेज नहीं करते, हम उन्हें अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं। और लिटरेचर की खूबसूरती यही है कि किसी और की कहानी पढ़ते हुए कभी कभी हम अपने आसपास के किसी इंसान की खामोशी समझने लग जाते हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपके सामने तो था, लेकिन आपको लगा कि उसका कोई एक हिस्सा है जो कहीं बहुत दूर चला गया है। शायद वो डिसअपीयरेंस फिजिकल नहीं होती, लेकिन इंसान चेंज हो जाता है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान, नंबर इज सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

So, एक लड़की है लिली क्लैन, ठीक है। वो एक दूसरी कंट्री में जाती है एक लैंग्वेज सीखने के लिए, लेकिन असल में लैंग्वेज सीखने से ज्यादा अपने रूट्स को समझने के लिए जाती है। सो एक नई नॉवल आई है टाइपाई स्टोरीज, इसी आइडिया के आसपास घूमती है और मुझे इसका सवाल बहुत ही रिलेटेबल लगा। अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है और अपने कल्चर के बारे में पता है, आप अपने एंसेस्टर्स की जगह देख चुके हैं, तो क्या आप ऑटोमेटिकली अपने आइडेंटिटीज को समझ जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी कोई पासपोर्ट तो है नहीं जिस पर एक ही जगह लिखी हो। हम कोई जगहों के होते नहीं हैं, किसी शहर के, किसी फैमिली के, किसी लैंग्वेज के, किसी पर्टिकुलर एक चाइल्डहुड मेमोरी के, और कभी कभी उस जगह के भी जहां हमने ज़िंदगी को सबसे छोटा हिस्सा वहां पर बिताया हो लेकिन सबसे ज़्यादा बिलोंग किया हो। जैसे कि हम अपने बचपन में स्कूल जाते थे, आज भी हम वहां से बिलोंग करते हैं। इसीलिए शायद घर कहाँ है इसका जवाब एड्रेस नहीं होता। कभी घर एक इंसान होता है, कभी कोई आवाज़, कभी कोई खुशबू, कभी किचन में मम्मी की वो आवाज़ें, कभी बचपन की कोई गली, और कभी सिर्फ एक लैंग्वेज। तो आज आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर दुनिया आपसे पूछे वेयर इज़ योर होम, तो आप एक जगह का नाम लेंगे या किसी इंसान का? यू टेल मी। क्योंकि ये किताब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम है लाइफ मस्त है एंड नंबर इज सेम 3311106। Stay tuned, Jio, Bindas.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: हाय, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क. कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

पिछले एक हफ्ते की बात करूं तो सिनेमा में एक पुराना इक्वेशन है, बड़ा स्टार प्लस बड़ा बजट प्लस बड़ा सेट मतलब बड़ी फिल्म। लेकिन क्या सच में पृथ्वीराज ने हाल ही में एक मलयालम सिनेमा में बॉलीवुड के वर्किंग स्टाइल और बजट की कंपैरिजन करते हुए इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया और मुझे लगा कि यार कितनी सही बात है। और इससे बड़ा सवाल निकलता है कि क्या जो बजट है उससे सिनेमा बड़ा होता है या कहानी से सिनेमा बड़ा होता है, क्योंकि जो बजट है वो आपको बड़ा सेट दे सकता है, बेटर लोकेशन दे सकता है, बिगर एक्शन सीक्वेंस दे सकता है, ह्यूज विजुअल इफेक्ट्स भी दे सकता है, लेकिन बजट से गारंटी नहीं कर सकता कि ऑडियंस किसी कैरेक्टर से प्यार करेगी। एक छोटी सी फिल्म हो सकती है, एक घर हो सकता है, तीन लोग हो सकते हैं, कमरे की कहानी हो सकती है, और फिर भी थिएटर से निकलते वक्त लोग कैरेक्टर अपने साथ घर लेकर जाते हैं। और दूसरी तरफ वो बिग बजट की जो फिल्म्स होती हैं जिसकी विजुअल्स आपको इम्प्रेस करती हैं लेकिन इमोशंस याद नहीं रहते। शायद सिनेमा की असली करेंसी ना पैसा है ही नहीं, कनेक्शन है, और यही वजह है कि आज ऑडियंस ना लैंग्वेज से ज़्यादा कहानी के ऊपर जाती है। उसे अच्छा सिनेमा चाहिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो और चाहे वो कोरियन ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि ड्रामास कितने पॉपुलर है हमारे बीच में, तमिल, मलयालम, हिंदी मूवी, हम सब बस यही ढूंढते हैं कि कहानी कहाँ पर अच्छी है, क्योंकि सबटाइटल पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं लेकिन अच्छा इमोशन समझने में 1 सेकंड लगता है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो बॉलीवुड की 100 CR वाली मूवीज़ हैं वो, या फिर अच्छी कहानी, क्या देखना पसंद करते हैं आप? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। रेडियो

0: टाइम था जब घर में टीवी पर कोई एक्टर दिख जाता था तो लोग बोलते थे अरे ये तो टीवी एक्टर है, और सिनेमा वाला एक्टर वो अलग लैंग्वेज में मतलब काउंट होता है, अलग लीग माना जाता है उसको। लेकिन आज ये जो डिस्टिंक्शन है ये लगभग टूट चुका है। एमीज ने फिर से इसी बदलाव को सेलिब्रेट किया, इस साल द बेस्ट ड्रामा सीरीज जीता, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड भी बहुत सारे लोगों को मिला है। लेकिन अवार्ड से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम स्टोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। आज कोई कैरेक्टर हमें सिर्फ 2 घंटे नहीं मिलता, वो 8 एपिसोड तक हमारे साथ रहता है। उसकी ज़िंदगी हम देखते हैं, उसकी मिस्टेक्स देखते हैं, उसके रिलेशनशिप्स देखते हैं, और धीरे धीरे वो कैरेक्टर फिक्शन कम और फैमिलियर ज़्यादा लगने लग जाता है। सो OTT से ये फ़ायदा तो हुआ है, शायद इसी वजह से आज टेलीविज़न को स्मॉल स्क्रीन कहना भी थोड़ा सा पुराना हो गया है। स्क्रीन छोटी हो सकती है लेकिन स्टोरी नहीं, और ऑडियंस अब स्टार पावर से ज़्यादा राइटिंग की तरफ अपना जो मोड है वो लेकर जाती है। जब मैं बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ती हूँ या फिर आई सर्च अबाउट रिव्यूज़, तो मुझे समझ में आता है कि लोग हर चीज़ डिस्कस करते हैं यार। मतलब लोगों को पसंद आती है अच्छी मूवीज, अच्छी स्टोरीज। 3 आवर्स अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो 2-3 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होने चाहिए। या एक ऐसी 8 एपिसोड की सीरीज जिसमें आप रात के 2 बजे तक देख रहे हो बस लास्ट एपिसोड बोल के, तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए। सो यू टेल मी कि अब आपको क्या लगता है कि OTT की वजह से क्या चेंजेस जो हैं वो आए हैं सिनेमा में। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है।
1: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

आपने कभी गौर किया है, कुछ ब्रांड्स को देखकर ना आपको प्रोडक्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सिर्फ कलर देखिए, शेप देखिए, पैटर्न देखिए और दिमाग तुरंत बोलता है ये उसी ब्रांड का है। यही ब्रांडिंग की सबसे बड़ी विक्ट्री है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। और गैप ने इसी आइडिया को अपने नए गैप बैग कलेक्शन में इस्तेमाल किया है। ब्रांड के फैमिली डेनिम और हुडी इंस्पायर्ड डिटेल्स को हैंडबैग में ट्रांसलेट कर दिया है। मतलब अब सवाल ये नहीं है ये बैग अच्छा है या नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्रांड अपनी आइडेंटिटी को दूसरे प्रोडक्ट में कैसे कैरी करता है। क्योंकि आज ब्रांड्स सिर्फ चीजें नहीं बेचते, वो एक फीलिंग, एक लाइफस्टाइल, एक विजुअल लैंग्वेज, एक पहचान। और जैसे एप्पल का प्रोडक्ट दूर से देखकर लोग पहचान जाते हैं, शनैल की कुछ चीजें लोगों को दूर से देखकर समझ में आ जाती है, लुई विटों का पैटर्न पहचान सकते हैं। यानी ब्रांडिंग का अल्टीमेट लेवल वो है जब लोगो हट जाए और सिर्फ आप स्टिल ब्रांड को पहचान लो। सो आपके लिए कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसे आप लोगों के बिना भी पहचान लेते हो? और हाँ, अगर आपका फेवरेट जीन्स ब्रांड कल बैग बनाना शुरू कर दे तो क्या आप उसे खरीदोगे या बोलोगे कि भाई जीन्स भी अच्छी बना लो पहले, या फिर इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर लो, दूसरी नई चीजें क्यों बनानी है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और नंबर इज सेम 3311106 3। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

0: मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

हमने ना बचपन से सुना है नेवर गिव अप, टीचर ने कहा, पेरेंट्स ने कहा, मूवीज ने कहा, मोटिवेशनल रील्स ने तो हजारों बार कहा, लेकिन क्या हर सिचुएशन में क्विट करना गलत है? वही खतरों के खिलाड़ी 15 में गौरव खन्ना ने शो छोड़ने का फैसला किया हेल्थ कंसर्न और अपनी फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। और मुझे उनका ये जो एग्जिट प्लान है ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि रियलिटी शोज में अक्सर एक ही लेसन देते हैं, जो अंत तक डटा रहा वही विनर। लेकिन असली जिंदगी थोड़ी सी अलग है, कभी कभी ना जीतने का मतलब आगे बढ़ना नहीं होता, सही समय पर रुकना भी होता है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ना, एक ऐसी जॉब छोड़ना जो आपको अंदर से खत्म कर रही है, एक बिजनेस आइडिया छोड़ना जिसमें लगातार नुकसान हो रहा है, या सिंपली ये मान लेना कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे लिए ये सही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम क्विटिंग को फेलियर समझते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर दिया होता है, टाइम, मनी, इमोशंस, ईगो, लेकिन पास्ट में लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट करने से मतलब आपको मजबूरी नहीं होना चाहिए। कभी कभी ना सबसे ब्रेव सेंटेंस ये होता है कि मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ ये समझने के लिए होती हैं कि हमें लड़ना भी चाहिए या नहीं। सो आज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके हिसाब से किस चीज़ को छोड़ देना वीकनेस है या कभी कभी विजडम। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, कल सेम टाइम सेम जगह पर यहीं पर रहूंगी मैं। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM बिंदास ओलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
3: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
4: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details call 500-56123.
5: एनकाई के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
6: ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने रेडियो ऑलिव पर ऑलिव रिवाइंड।
7: बाहर से

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है स्वैग के साथ, स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे चलिए एक साथ बैठकर शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहाँ पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मज़राती।
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेबनी एग्स,
1: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मज़राती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: is brought to you by
1: Malabar Golden Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Golden Diamonds Safari Mall में.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और पूरी दुनिया में मैंने ये सुना है कि भाई कंफर्ट जोन से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आपको पता है कि कंफर्ट जोन में आपको कौन रखता है? सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका जो है हमारे ब्रेन के पास जाता है, क्योंकि हम जब भी कंफर्ट जोन ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ हो ना जाए और कुछ अनहोनी ना हो, इसलिए हमें ब्रेन जो है थोड़ा कंफर्टेबल रखने की ही कोशिश करता है। मगर ब्रेन के इस टेंडेंसी के खिलाफ जाना ही जो है ग्रोथ की ओर हमें ले जाता है। इनिशियली बहुत मुश्किल जरूर फील होगा हमें, मगर धीरे धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम अगर हम करेंगे तो हम आदत डलाएंगे ब्रेन को कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं करके। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या होते हैं ना, ये समझ नहीं पाते, तो ये होता है कंफर्ट जोन से बाहर आने से हमारा ब्रेन खुद हमें रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह आपने सोचा है कि मुझे जल्दी उठना है, और जब सुबह अलार्म बजता है तो आपका ब्रेन कहता है कि यार थोड़ी देर और सो जा। उसे सोचने का वक्त मत दो, ठीक है? जैसे अलार्म बजेगा 3, 2, 1 गिनो और उठो। तो कुछ भी करने से पहले अगर आपको कुछ भी करना है और आपको वो फील हो रहा है, हेसिटेशन फील हो रहा है, तो 3, 2, 1 रूल आप यूज कर सकते हो। 3, 2, 1 काउंट करो और शुरू कर दो काम। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
1: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
0: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: Only laga aur ho ja recharge.
4: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
5: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे बहुत प्यारी बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जब हम ब्राउजर यूज करते हैं तो ब्राउजर में अगर बहुत सारे टैब हमने खोल रखे हैं तो एक पॉइंट के बाद सिस्टम जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। सिमिलरली अगर हम अपने दिमाग में भी इतने सारे टैब खोल के रखेंगे, अनफिनिश्ड टास्क रखेंगे या फिर अनप्रोसेस्ड इमोशंस रखेंगे तो हम कैसे प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, है ना। तो हमारे फंक्शनिंग के लिए भी हमारे दिमाग के कुछ टैब जो खुले हुए हैं, अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं या फिर इनकम्प्लीट कॉन्वर्जेशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें कंप्लीट करना पड़ेगा या क्लोज करना पड़ेगा। तो जब तक हम ये स्टेप नहीं लेंगे तब तक हम भी बेहतर फील नहीं करेंगे। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
2: लगा और हो जा रिचार्ज ऑलिव रिचार्ज
3: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
2: ऑलिव रिचार्ज
4: This hour is brought to you by
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही स्पेशल डे के बारे में बात करना चाहूंगा। आज जो है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है इंडिया में, और मुझे एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना है। जब मैं कॉलेज में फर्स्ट डे जब मैं पहुंचा था, तो जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें एक टीचर ने पूछा कि व्हाट इज इंजीनियरिंग, क्या है इंजीनियरिंग। तो भाई बच्चे तो बिल्कुल फील्ड में आते, सब बोलने लगे इनोवेशन है, प्रोग्रेस है, ये है वो है, टेक्नोलॉजी है। और ये सब सुनने के बाद टीचर ने बोला कि आप लोगों ने जो भी जवाब दिया सही जवाब दिया है, मगर एट इट्स कोर अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग इज नेशन बिल्डिंग। एक कंट्री के प्रोग्रेस का सबसे बड़ा इंडिकेशन जो है उस कंट्री के इंजीनियर्स के क्वालिटी से पता चलता है करके। सच बता रहा हूँ, उस दिन से पहले तक इंजीनियरिंग के लिए कोई खास वैल्यू नहीं थी मेरे मन में, मगर उस दिन जब मैंने ये एक पर्सपेक्टिव सुना तो मुझे फील हुआ कि बात तो बिल्कुल सही कही जा रही है। इवन तो मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैं बहुत बढ़िया इंजीनियर हूँ, मगर ज़रूर मैं ये कह सकता हूँ कि इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जो प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग एक बार कर लो ना तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। ये
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है, ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, ये गाना

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Hello to all the listeners of Radio

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: आप सभी का एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो आपके मसल्स को इम्प्रूव करेगा, जो आपके कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगा, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ आपको एक मेडिटेटिव स्टेट जैसा फील भी देगा। ये सब एक ही एक्सरसाइज देता है, और इस एक्सरसाइज का नाम है स्विमिंग। जी हाँ, स्विमिंग इसलिए इतना इफेक्टिव है क्योंकि एक तो पहली बात, हमारे जॉइंट्स को ये इतना इफेक्ट नहीं करता, लोड नहीं होता जैसे रनिंग में या फिर वेट लिफ्टिंग में आ सकता है, वैसे लोड हमारे जॉइंट्स में स्विमिंग के दौरान नहीं आता। दूसरी बात, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है और हमारे हाथ पाँव मसल्स सारी चीज़ें चलती हैं। ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रीदिंग, हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, ये सब जो है हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन स्किल्स जो है इंप्रूव हो जाते हैं। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम ऐसे पानी में एक रिदमिक मूवमेंट में जाते रहते हैं तो ब्रेन जो है उसको एक काफी काम स्टेट की तरफ परसीव करता है, और एक काफी काम और मेडिटेटिव फील जो है ये एक्सरसाइज देता है, और हमारे लंग फंक्शन और हार्ट फंक्शन को भी ये बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव कर देता है। इसलिए मुझे लगता है कि स्विमिंग एवरीबॉडी शुड लर्न। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने सीखा, मैंने रिसेंटली स्विमिंग सीखा, और जब मैंने सीखा मुझे पता चला कि इसके इतने बढ़िया फायदे हैं, और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7700525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज
3: This hour is brought to you by
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। देखिए, अगर हम सुपर हीरो मूवीज की बात करें तो सुपरमैन को 8 एक्टर्स ने प्ले किया है, बैटमैन का कैरेक्टर 9 एक्टर्स ने प्ले किया है, हल्क का कैरेक्टर जो है 4 एक्टर्स ने प्ले किया है, मगर वुल्वरीन सिर्फ एक ही एक्टर ने प्ले किया है। इवन स्पाइडरमैन तक 3 एक्टर्स ने प्ले किया है, लेकिन वुल्वरीन एक ही एक एक्टर ने प्ले किया है। और इसलिए सुपर हीरो रोल्स में अगर हम देखें तो वुल्वरीन काफी आइकॉनिक है, इसीलिए ह्यू जैकमैन भी काफी ज्यादा आइकॉनिक है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं. यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा.
3: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा. रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज.
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें. धरोहर मिस मत करना.
4: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
0: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
4: ऑलिव रिचार्ज.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतार्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव.
1: से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कव्वाली फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली देंगे ये सलामी चलने को जगह नहीं निकलेगी भाई की सवारी हाँ थोड़ा टाइम रुक जा खड़ी

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लाउंज के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL Space अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लाउंज में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं ना एक बहुत ही बढ़िया चीज ऐसे बैठ के सोच रहा था। आज मेरे कली का बर्थडे है, मेजबा है उनका नाम, तो मेजबा भाई को बर्थडे विश करने के बाद मैं ऐसे आया। मैंने सोचा कि यार एक पर्टिकुलर डे में कितने लोग अपना बर्थडे मनाते हैं करके। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पता चला ऑन अ नॉर्मल डे अप्रॉक्सीमेटली 22 मिलियन लोग जो हैं अपना बर्थडे मनाते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो सबसे ज़्यादा बर्थडेज जो हैं वो मिड सितंबर यानी कि अर्ली टू मिड सितंबर के बीच में आते हैं, और सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बर्थडेज जो है वो दिसंबर एंड के टाइम पे आता है। और ये एक बात मैंने ऐसे सोचा कि वाह यार कितनी बढ़िया बात है, मतलब ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर डे में 22 मिलियन लोग जो है अपना बर्थडे मनाते हैं। वाओ, दैट इज एक्चुअली अमेजिंग। तो यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो। क्या

0: is brought to you by
1: Malabar Golden Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Golden Diamonds Safari Mall में.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है। एक ऐसी हैबिट जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि इसके साथ आप नेगोशिएट नहीं करते, ये हैबिट आप कुछ भी हो फॉलो करते हो, ठीक है। इसमें ब्रशिंग और फ्रेशन अप होना, ये सब मैं हटा के रख रहा हूं, मगर कोई एक ऐसी हैबिट जो आपने अडॉप्ट की है अपने लाइफ में बहुत टाइम से या फिर रिसेंटली, मगर आप इसके साथ नेगोशिएट नहीं करते, कुछ भी हो आप ये करते हो। जैसे कि सतीश जी जो है वो रनिंग के लिए जाते हैं, ऐश रनिंग के लिए जाते हैं। सिमिलरली आपके लिए ऐसा कौन सा हैबिट है जो आप कुछ भी हो जाए, बारिश हो बारिश ना हो, गर्मी ना हो, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये चीज़ आप करते ही हो, बताइए मुझे 3311063 पर। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
4: Only laga aur ho ja recharge.
5: Olive recharge.
0: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio bindaas.
5: Olive recharge.
6: This hour is brought to you by
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: यू, घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
3: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
2: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7777000525 पर।
3: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
4: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par, Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर Song of the Year.

पता है आपको अपने ऑफिस में लड़कियों की कमी तब महसूस होगी एंड फैशन गर्लीज की कमी तब महसूस होगी जब आप हेड टू टो पूरी तरीके से तैयार होकर अपने नए आउटफिट के साथ नई ज्वेलरी के साथ ऑफिस जाते हैं एंड कोई आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, कोई पूछता भी नहीं है कि ये जो ज्वेलरी है ये आपने कहाँ से ली, ये जो कपड़े हैं ये थोड़े से नए दिख रहे हैं। के लड़कों को मतलब नहीं है, वो सेम ब्लू शर्ट पहन के जो है रोज ऑफिस जा रहे हैं एंड उसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं। एंड मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि लड़के जो है वो तैयार नहीं होते, मैं लड़कों की भी बात कर रही हूँ कि अगर लड़के भी एक दिन एफर्ट डाल के जो है चले जाएं और ऑफिस में कोई लड़की नहीं है तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल ही नहीं पाएगा जो आप डिजर्व करते हो। मतलब लड़के जो है आज कहीं खास जगह जा रहे हो क्या, तैयार हो के क्यों आए हो, ये बोल देंगे आपको। लेकिन लड़कियां जो हैं वो हेड टू टो आपकी पूरी तारीफ करती हैं, ओ माय गॉड ब्रो योर शर्ट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, ओ माय गॉड न्यू शूज़ वेरी नाइस, एंड ऐसे जो है आपको जो है हाइप मिलती है, मोटिवेशन मिलता है आपके OOTD पे। OOTD मतलब आउटफिट ऑफ द डे पर। और मेरे साथ आज यही हुआ, क्या हुआ कि मेरी ऑफिस की लड़कियां जो है जब मैं ऑफिस पहुंची तब ज़्यादा थी नहीं, तो मुझे जो है वो रिस्पांस नहीं मिल पाया जो मैं सोच कर आई थी कि मुझे मिलेगा, क्योंकि आज मैं अपनी मॉम ने मुझे ज्वेलरी ला कर दी थी मैं वो पहन कर आई हूँ, नई ब्रेसलेट पहनी है, अच्छी सी ड्रेस पहनी है, सो नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप मेरी स्टोरी पर जाकर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे 3311063 पर आके व्हाट्सएप पे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। हाय हेलो गुड इवनिंग तो कह ही सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूं मैं, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिंग इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने यानी आपकी कशिश ने अपने कंधों पर उठा रखी है। सो बस वॉल्यूम बढ़ाकर गाने इंजॉय करते जाओ आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास। इन गानों के उस पर आ रही हूं मैं, जरा मौसम का मामला जो है आपके लिए लेकर।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check. Time check. Brought to you by Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor. Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan. September 18th, 7 p.m. And bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: अरे रानी का तो पता नहीं पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं यस दोहा गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा
3: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा रेट्रो वाइब्स प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें धरोहर मिस मत करना
4: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Akshay Kumar.
7: Hi, this is Anushka Sharma.
8: And I'm Ashok Vasi.
9: This is Ranveer Singh. Stay tuned.
10: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
11: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
12: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
13: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: इतना गरम तो मेरी मैथ्स टीचर का दिमाग भी नहीं होता था जब मैं टेबल्स याद करके नहीं जाया करती थी क्लास में, जितना इस वक्त का मौसम हो रहा है। देखिए कितना अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा जो है मैथ्स टीचर को तभी आता है जब आप टेबल याद करके नहीं जाते हो। तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, टेबल्स याद कर लेना, ठीक है। बल्कि आज का जो टेम्परेचर है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री सेल्सियस था एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। तो थोड़ी सी राहत, जैसे ही 20 वाले नंबर्स में आ जाता है ना, 20s में आ जाता है टेम्परेचर, ऐसे लगने लग जाता है कि हाश चलो अब थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि राहत मिलने वाली है, क्योंकि बस ऐसे टक से छू कर वापस आ जाता है 20 को टेम्परेचर। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ओलिपर एंड आपके लिए जबरदस्त इवनिंग शो जो है वो लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखा है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। देखिए मौसम का तो मैं क्या ही कहूँ, मौसम बिल्कुल उन रिश्तेदारों की तरह अपनी बात से जो है पलट रहा है। जो रिश्तेदार कहते थे ना कि अरे बेटा तुम बस ये कोर्स कर लो फिर जॉब लगवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बिल्कुल उसी तरीके से ये मौसम पलट गया है। इसने भी कहा था कि देखो ये जो 4-5 महीने हैं गर्मी सह लो फिर अच्छा मौसम लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन कतर के मौसम पे मुझे पूरा भरोसा है कि अब आने वाले जो 3-4 महीने हैं वो बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, बहुत अमेजिंग इवेंट्स होने वाले हैं एंड हमें इन टोटल बहुत मज़ा आने वाला है। सो बस इसी उम्मीद के साथ अच्छे गाने जो है आप इन्जॉय करते रहिए आपकी कशिश के साथ 106.3 रेडियो ओलिपर। बाकी कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ऑरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ऑरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मासराती।
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मासराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
1: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मासराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

पता है आज मुझे ओम शांति ओम मूवी का एक गाना बहुत ज्यादा याद आ रहा है, और उस गाने का नाम है जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे। अभी जग सूना सूना इसीलिए लग रहा है क्योंकि इस स्टूडियो की जो है दीवारों में एक भी खिड़की की जगह नहीं है एंड मैं बाहर का मौसम नहीं देख पा रही हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कंसेशन शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाया है। तो यार आप लोगों से बस मैं इतनी ही इल्तिजा करना चाहती हूँ कि मेरी इन आंखों को थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। अगर मैं बाहर के बादल को जो है आसमान को जो है वो देख लूँ, तो बादलों की आसमान की एक प्यारी सी फोटो अगर आप मुझे भेज सकते हैं तो भेज दीजिए। सनसेट का वक्त हो रहा है तो क्या है ना कि बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग फोटोज आ जाएंगी एंड मेरे वॉलपेपर पे बहुत अच्छी लगेंगी। सो जल्दी जल्दी अपने कैमरा जो है वो उठाइए, अपना फोन उठाइए एंड मुझे प्यारी प्यारी फोटोज जो है वो भेज दीजिए। लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, सिग्नल पे खड़े हुए हैं या पार्किंग में आपकी गाड़ी जो है वो पार्क है या आप पीलियन सीट पे बैठे हुए हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं फोटो जल्दी से। 3311063 इज द नंबर, जल्दी जल्दी भेज दीजिए आपकी फोटोज का, बेसब्री से इंतजार कर रही हूं मैं। और ये गाने तो हम साथ में इंजॉय करने वाले हैं ना, सो वॉल्यूम बढ़ाकर गाने इंजॉय करते जाइए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो। Bye.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं. स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है. शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए. The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर. ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार. ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026. द Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
3: Zabardast evening. Make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

पहले आते हैं अच्छे गाने, फिर आते हैं बहुत अच्छे गाने, और फिर आते हैं ऐसे गाने जो दिल को छू जाते हैं, और ये उन गानों में से जो है सबसे आगे चल रहा है। देखो अभी वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कंसिस्टेंट शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाई रखी है। अब देखिए यार, मैंने आपसे ना थोड़ी देर पहले ही इल्तिजा की थी कि यार देखो इस बंद स्टूडियो से ना बाहर का नजारा नहीं दिखता है, तो जरा आपकी नजरों से मुझे बाहर क्या चल रहा है वो एक बार दिखा दो। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही प्यारी प्यारी सी जो फोटोज हैं वो मुझे भेजी हैं। अदील जी ने सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी फोटो भेजी है, एंड उसके बाद महबूब जी ने जो है एक वीडियो भेज दी है, सो थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद हेलो मैम भेजा है हमें, सर आप एक बार अपना नाम प्लीज मुझे बता दीजिए, आपका नाम हमें नजर नहीं आ रहा है। अस्मा जी ने एक वीडियो भेजा है जिसका लेना देना नहीं है बिल्कुल भी सनसेट से, लेकिन उनका गुड इवनिंग मुझ तक पहुंच गया है। ओके एंड थैंक यू सो मच, एंड बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग फोटोज जो है वो आप सबने भेजे हैं। यार मुझे कभी कभी लगता है कितनी ज़्यादा लकी हूँ मैं, मतलब इतना लकी कोई कैसे हो सकता है। वैसे देखिए, अगर आप भी लकी होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप हमारे यू नो दिल में एक घर बना लें, तो बॉलीवुड फैन है या नहीं है वो प्रूफ कीजिए आप, क्योंकि चुटकी भर सॉन्ग गाना जो है वो हम आपको सुनाने वाले हैं। थोड़ी सी देर में हम ये कॉन्टेस्ट खेलने वाले हैं, जहां पर आपको मुझे बस बताना है गाना पहचान के कि आखिर ये कौन सा गाना है जो मैं आपको सुना रही हूँ। सो तैयार हो जाइए, फिलहाल जो है वॉल्यूम बढ़ाकर हमारा अगला गाना इंजॉय कीजिए, सेना सेना। सो इंजॉय कीजिए, एंड बाकी आपकी कशिश के साथ गहते रहिए जियो बिंदास। थोड़ा सा भंगड़ा थोड़ा सा डांस हो जाए। मैं हूँ आपकी कजन स्टेडियम जियो बिंदास।

0: Doha's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ कतर ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.

आई थिंक ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मैं हो गई हूँ बावड़ी। यस वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कजन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत टाइम से जो है एक चीज कोशिश कर रहे होते हैं कि यार आज तो ये वाला काम कर ही देंगे, आज ये करके रहेंगे या बस 5 मिनट में ये वाला काम करेंगे, एंड फिर हम भूल जाते हैं, हम वो स्किप ही कर देते कि अरे ये काम करना था। यानी जिस काम को आप सुबह से जो है रिवाइज कर रहे हो कि ये काम करना है करना है करना है करना है करना है करना है, उस काम को आप कंप्लीटली भूल जाते हो, एंड ये जो है नॉर्मल है, कोई बात नहीं। और मेरे साथ अभी अभी हुआ है, मुझे जो है आपसे चुटकी भर सॉन्ग के लिए एक गाना जो है वो डिसाइड करना था, एंड मुझसे वो डिसाइड ही नहीं हुआ। मैं जो है सुबह से ये सोच रही हूँ कि मैं डिसाइड करूँगी। कल तो मेरी मम्मी ने हेल्प कर दी थी, लेकिन मम्मी बीइंग अ टीचर उन्होंने इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर सेट किया था आप लोगों के लिए कि आप लोग गैस ही नहीं कर पाए। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ईजी मैं करूँगी आपके लिए, मैं गाना ढूंढूंगी, एंड सुबह से मैं ये सोच रही हूँ कि आज गाना ढूंढूंगी कौन सा गाना पूछूँ, लेकिन वो गाना डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। सो आज हम थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे आप लोग। यस, चुटकी भर सॉन्ग में मैं सबसे कौन सा गाना जो है वो पूछूं ये भी मुझे आप लोग बताओगे। यानी आप में से जिसका भी मैसेज मुझ तक पहले पहुंच गया, आज उसका फेवरेट गाना जो है वो हम चुटकी भर सॉन्ग में पूछेंगे। सो जल्दी से 3311063 पर अपना फेवरेट गाना मुझे मैसेज कर दो। जिसका भी मैसेज सबसे पहले आएगा उसका जो फेवरेट गाना है वो मैं आज चुटकी भर सॉन्ग में सुनाऊंगी, एंड जो है लोगों से गेस करवाऊंगी और वो मुझे आंसर करेंगे। सो देखिए, विन विन सिचुएशन है, एक तो आप हमेशा आंसर करते हो, लेकिन आज आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट करने का मौका मिल रहा है। सो चुटकी भर सॉन्ग में जहां पर हम गाने का एक पार्ट लोगों को सुनाते हैं एंड उनसे बोलते हैं कि यार गेस करो ये गाना एंड इसकी मूवी, वो आपको डिसाइड करने मिल रहा है। तो जल्दी से अपना अपना फेवरेट गाना या कोई भी गाना जो आप चाहते हो कि लोग गेस करें उसे 3311

1063 पर मुझे मैसेज कर दो कि कशिश हमारा बेसिकली सूरज हुआ मध्यम हमारा फेवरेट गाना है, ये गाना पूछो, बस गाने का नाम मुझे भेज दो 3311063 पर, एंड मैं वो वाला क्वेश्चन जो है आपका बनाकर लोगों से पूछूंगी एंड ये भी बताऊंगी कि आपका फेवरेट गाना है वो। सो जल्दी जल्दी 3311063 पर मुझे अपना फेवरेट गाना मैसेज कर दो ताकि मैं लोगों से पूछ सकूं। एंड फिलहाल मधोश गाना जो है टॉक्सिक मूवी का आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो वॉल्यूम बढ़ाकर इस गाने को एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास। क्या कर रहे हो, जल्दी मैसेज करो 3311063।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास।
2: टाइम चेक
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: नानातल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाकिफ अलखोर।
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:13 दैट इज 6:13 Stay tuned, Jio Bindas.
4: Ew, घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
5: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
4: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
5: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
6: Hi, Radio Olive. 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
7: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
8: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
9: Zabardast evening. Make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

स्विंग तो आप लोगों ने किया है, क्योंकि आप लोगों को मैंने एक मौका दिया था कि यार जरा क्वेश्चन पेपर सेट करो, यानी जरा गाना मुझे बताओ कि कौन सा आज चुटकी भर सॉन्ग वाली कॉन्टेस्ट में सबसे पूछा जाए, एंड चुन चुन के, आई किड यू नॉट, चुन चुन के सबसे टफ गाने जो है ये आपके फेलो लिसनर्स आपके लिए लेकर आए हैं। एंड मैंने ये कहा था कि जो सबसे पहले जो है सबसे पहला गाना बता देगा वो उसका मैं गाना पिक कर लूंगी, लेकिन इतने टफ गाने उसमें से मतलब 50% गाने तो मुझे भी नहीं पता थे। कैसे करते हो यार आप लोग? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखो यार, मैं बताती हूँ कौन कौन से गाने जो है वो आपके फेलो लिसनर्स ने हमें बताए थे। विनायक जी ने सबसे पहले इतना टफ गाना जो मैंने आज तक सुना नहीं है वो भी जो है बताया था। उसके बाद अनायता जी ने जो है, ये हर रोज सही गाने गेस करती हैं, लेकिन आज इन्होंने जो है सबसे टफ गाना बाकी सबके लिए जो है चूज किया था, हम मिले ना मिले फ्रॉम द मूवी किसना। मैं क्यों, थोड़ा आसान सा होता है यार, जो सबने सुना हो वैसा गाना चूज करना होता है। एंड दीवानियत मूवी से जो है पाकीज़ा जी ने दीवानियत गाना जो है वो प्ले करने बोला है। वत्सल जी ने जो है यलगार मूवी का एक ट्रैक जो है आखिर तुम्हें आना है ज़रा देर लगेगी बोला, ठीक है, लेकिन हम ये शो जो है ये हर एज ग्रुप के लोगों के लिए कर रहे हैं ना, तो सबको जो है वो आना चाहिए गाना, तो आप लोगों को ऐसा गाना चुनना था। लेकिन आप लोगों ने जहाँ इतना ज़्यादा टफ ये कॉम्पिटिशन कर दिया, तो मैं जो है अपने स्टूडियो से बाहर गई एंड मैंने हमारे बर्थडे बॉय मिसबा से जो है पूछा कि आपका फेवरेट गाना बताओ, और उन्होंने जो फेवरेट गाना बताया हमने बस वो चुन लिया है। सो आप लोगों को एक मौका दिया गया था, आपने वो मिस कर दिया है। फिलहाल सबसे पहले तो मिसबा को जो है हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं। मिसबा मतलब मेरे लिए तो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी जो है वो हमें पिलाता है, एंड मिसबा हमारे ऑफिस का क्यूटी है जिसे सब बहुत प्यार करते हैं। सो मिसबा को हैप्पी बर्थडे जो है वो कहना तो बनता है। सो हैप्पी बर्थडे मिसबा, एंड आपका फेवरेट वाला गाना जो है वो आज हम लोगों से पूछ रहे हैं हमारे चुटकी भर सॉन्ग वाले कॉन्टेस्ट में। तो ज़रा आप लोगों के लिए अभी गाना है आपकी नज़र, तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर, ज़रा कान लगाकर और ध्यान लगाकर ये गाना सुनो, और मुझे बताओ कि कौन सी मूवी का गाना है और इस गाने का नाम क्या है।

आतिफ असलम की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वाली आवाज है। एक ही हिंट दे देती हूँ कि आपको कैटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर इस मूवी में जो है दिख जाएंगे। बहुत आसान है मूवी का नाम, बहुत इजी है गाने का नाम। जल्दी से 3311063 पर मुझे आंसर मैसेज कर दो। और जितने सारे लोगों ने गाने मुझे भेजे थे ना, रिकमेंड किए थे, कल से जो है थोड़े से आसान गाने रिकमेंड करना। बाकी अभी आंसर दीजिए मुझे से जल्दी जल्दी 3311063 पर। वैसे किसी ने मैसेज किया कि कशिश एक और बार सुना दीजिए, हम वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाए थे, सो जरा एक और बार ये जो गाना है ये सुन लीजिए।

0: लिरिसिस्ट ने, सिंगर ने, सबने बहुत मेहनत करी. जल्दी से 3311063 इज द नंबर, फोन उठाओ एंड मैसेज कर दो, ऑडियो नोट भेज दो, आंसर बताओ बस. फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आर आर आपके रेडियो सेट्स पर, सो इसे भी एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास.
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
1: कूल सॉन्ग.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करे डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
5: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
6: Zabardast evening. Make your drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

अभी अभी ना वापस मतलब देखी मैंने बंटी एंड बबली, एंड बचपन में जब बंटी एंड बबली देखी थी तो अलग प्रोस्पेक्टिव से देखी थी, अभी देखी तो अलग प्रोस्पेक्टिव से देखी, समझ नहीं आ रहा है कौन सा प्रोस्पेक्टिव जो है वो ज्यादा सही है। अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, बंची एंड बबली की का रिव्यू जो है वो मैं बाद में दूंगी, लेकिन अभी जो है हम बात कर लेते हैं चुटकी भर सॉन्ग की, जहां पर आपको एक गाने का चंक यानी एक गाने का पार्ट मैंने सुनाया था, एंड आपको बस गेस करना था ये गाना जो है वो कौन सी मूवी से है, एंड इस गाने का नाम क्या है। सो वैसे जिन लोगों ने नहीं सुना उन्हें जो है मैं एक और बार ही गाना सुना देती हूँ।

एंड हमारे बहुत ही स्मार्ट लिसनर्स ने जो है बिल्कुल सही सही पहचान लिया है। देखो गाने का नाम और मूवी का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो हम जो है आपको एक और मौका देना चाहते हैं, इसीलिए एक और मौका आपको दे रहे हैं। जिन लोगों ने अभी अभी गेस किया है वो लोग भी चालू रख सकते हैं हमें आंसर देना 3311063 पर। फिलहाल जिन्होंने सही आंसर दिया है हम उनका नाम जो है वो रीड आउट लाउड कर देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर करती थी ना, बिल्कुल वैसे ही। सो श्रीनिवास जी ने बिल्कुल सही जो है आंसर दिया है, आसमा जी ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है एंड उन्होंने मिसबा को हैप्पी बर्थडे भी कहा है। सो थैंक यू सो मच, मैं आपकी विशेष जो है वो मिसबा तक पहुंचा दूंगी। एंड अनायदा ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है एंड इन्होंने सर ने अपना नाम मुझे बताया था लेकिन मुझसे मिस हो गया बिकॉज ऑडियो नोट में उन्होंने ओके मोहिशा नाम है इनका एंड इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है मैसेज पे भी एंड ऑडियो में भी। विनायक सॉरी यार, मैं आपका जो गाना जो अपनी इतना टफ गाना हमें बताया था वो हम नहीं ले पाए रिकमेंडेशन में, लेकिन आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। सो थैंक यू सो मच। ये सारे वो हैं जिन्हें हम ओजी बॉलीवुड फैंस जो है वो कह सकते हैं। बाकी ये जो गाना है जो हमारा आज का चुटकी भर सॉन्ग का सुपरस्टार है, इसे जो है आप अपने लव्ड वंस को जो है डेडिकेट कर सकते हैं। हिंट में मैंने यही बताया था कि इस मूवी में जो है कैटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर आपको जो है देखने को मिलेंगे एंड बहुत ही क्यूट सी अजीब सी अजब सी जो है ये प्रेम कहानी है। बाकी हिंट जो है इतना काफ़ी है। इस गाने के साथ साथ एक और गाना है जो आप अपनी पसंदीदा औरत को जो है डेडिकेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं खुद को ही डेडिकेट कर देती हूँ। स्मॉल टाउन गर्ल गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, बचना है हसीनो मूवी से। वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास। मुझे भी डेडिकेट कर सकते हो वैसे, मैसेज करो 3311063।

0: fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास
3: Zabardast evening. Make your drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

देखिए सिर्फ गाने का नाम एक्सक्यूजेस नहीं है, सारे अलग अलग टाइप के एक्सक्यूजेस जी जो है वो हमें बता दिए गए हैं एपी ढिल्लो जी के द्वारा कि आप क्या क्या एक्सक्यूजेस दे चुक सकते हैं। देखिए वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कंसेशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, बात हम कर रहे थे हमारे आज के चुटकी भर सॉन्ग की, यानी जहां पर हमने आपको एक चंक सुनाया था गाने का और आपको जो है हमें बताना था कि ये गाना कौन सा है एंड इस गाने का नाम क्या है एंड ये गाना कौन सी मूवी से है। आप लोगों के सामने ना मतलब पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मेरी आवाज़ ऐसे भेक से जाती है मेरी कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आपको मैं एक और बार सुना देती हूँ कि वो गाना कौन सा था।

0: आदब असलम जी की आवाज में रणबीर एंड कैटरीना की मूवी का ये ट्रैक था। ये मैंने आपको हिंट पहले ही दे दिया था। मूवी का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी एंड गाने का नाम है कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। मतलब ये गाना हर उस लड़के के लिए जो ये कहता है कि यार देखो मैं प्यार तो बहुत करता हूँ, बस मुझसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, क्या करूँ, आई एम बैड एट एक्सप्रेसिंग, मेरे पास वर्ड्स की कमी हो जाती है। कैसे कमी हो जाती है यार वर्ड्स की, कैसे कमी हो जाती है? लड़ते वक्त तो आपकी वर्ड्स की कमी नहीं होती, प्यार जताते वक्त कैसे कमी हो जाती है, आई वांट टू आस्क। वैसे देखिए चलिए, अब और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें सही आंसर दिया था एक और बार मौका देने के बाद। तो राजा शाह जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है एंड और किसका सही आंसर आया है, अब मोहम्मद कैफ जी का बिल्कुल सही आंसर आया है, अनिरुद्ध जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है अजब प्रेम की गजब कहानी से कैसे बताएं। एंड मुझे समझ नहीं आता हम लोगों का ऑब्सेशन क्या है कि हमें ना गाना नहीं पता है, मतलब गाने का नाम नहीं पता है, लेकिन हमें ये पूरी तरीके से पता है कि लिरिक्स क्या है। तो उन्होंने पूरा का पूरा लिरिक्स लिख दिया है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि नाम जो है वो कहाँ ख़त्म होता है। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए तू जाने ना, आप सिर्फ तू जाने ना भी लिख सकते थे या कैसे बताएं ये भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने पूरा लिखा है कि बाय चांस अगर लिरिक्स में जो है गाने का नाम ना छुपा हो तो फिर क्या करेंगे। वैसे देखिए ये सारी मेरी इधर उधर की बातें तो चलती रहेंगी, बाकी इंपॉर्टेंट वाली बात हम थोड़ी सी देर में करने वाले हैं जिसे सुन के आप कहेंगे वाओ। बस इसीलिए आपके लिए जो है एक वाओ वाला गाना मैं लेकर आ गई हूँ, गाने का नाम है वाओ। सो इसे वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, ओनली फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर में ये गाना आप एंजॉय कर रहे हैं एंड बस कहते रहिए जियो पिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है,
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर
2: ये गाना
1: से वाओ।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
1: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
0: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा। रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
1: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ

0: ओ यार देखो, दिल लगाना तो इस दुनिया में फिर भी आसान है, लेकिन जॉब करना बिल्कुल आसान नहीं है। आप अगर एक कॉर्पोरेट गर्ली हैं या कॉर्पोरेट गाय हैं या कॉर्पोरेट मैन हैं या कॉर्पोरेट लेडीज हैं, सबको आई होप मैंने जो है पक्का से बोल दिया हो, कोई ऑफेंड नहीं होगा, मैं सबकी बात कर रही हूँ, सबके लिए इक्वली टफ है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, आज ना आपको मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ, तो जरा ध्यान से सुनना। अब क्या होता है ना कि आप लोग हमेशा मुझसे कहते हो कि यार कशिश तुम जेंजी हो, इसलिए जेंजीज की इतनी जो है साइड लेती हो, ऐसा जेंजीज ने कुछ काम नहीं किया है कि उनकी साइड ली जाए। लेकिन आज एक कहानी आपको सुनाने वाली हूँ कि जेंजीज कितने सैवेज होते हैं और क्यों स्ट्रेस फ्री रहते हैं, एंड मतलब ज्यादातर स्ट्रेस फ्री रहते हैं। थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है बात बात पे हमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम मेजरली स्ट्रेस फ्री रहते हैं। सो कहानी जो है वो शुरू यहाँ से होती है कि सपोज हमारी जेंजी का नाम आप ले लो नेहा। सो नेहा ने जो है वो अपने HR को जो है मैसेज किया कि सर मैं जो है नहीं आ पाऊंगी कल ऑफिस, क्योंकि मेरा जो है एक मेडिकल अपॉइंटमेंट है जो रीशेड्यूल नहीं किया जा सकता, क्या मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। अब HR जी ने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ये कह दिया कि यार देखो नेहा, हमारे ना कंपनी पॉलिसी नहीं है जो आपको वर्क फ्रॉम होम दे, तो आपको आना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा ऑफिस में। नेहा ने ओके बोल के, और कल वो जो है नेक्स्ट डे नेहा ऑफिस पहुंची, उन्होंने अपना पूरा काम किया, सही टाइम पे लॉग इन किया, सही टाइम पे लॉग आउट किया, एंड उसके बाद वो घर चली गई। जो उसके नेक्स्ट डे जो है HR का मैसेज आता है कि नेहा कल हमने आपको जो है रात को जैसे ही क्लाइंट ने हाँ कहा था वैसे ही मेल किया था, आपने उस पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, उस वजह से हमारा क्लाइंट नाराज हो गया। तब नेहा ने रिप्लाई किया कि क्योंकि सर हमारी कंपनी पॉलिसी नहीं है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूं, कि मैं घर से काम करूं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। यार कितनी सैवेज है ये लड़की, कितनी बढ़िया लड़की है यार, काश हम सब भी एक बार अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर सकते। वो जाकिर खान का एक स्टैंड अप है, उसमें वो कहते हैं कि अगर एक आम इंसान के अकाउंट में जो है 2-3 महीने की सैलरी हो तो वो बिल्कुल इतना जो है मतलब इतना सब कुछ सहे ही ना। पर ये जो इन्होंने किया है, ये तो मैं बोलूँगी कि जेंजी से जो है आपको सीखना चाहिए, एंड ये सैवेजनेस मुझे ऐसा लगता है, ये सैवेजता सब में होनी चाहिए। बताइए आपको क्या लगता है कि क्या ये आप कभी लाइफ में इतनी हिम्मत करके अपने मैनेजर को, अपने HR को, अपने बॉस को बोल पाएंगे? 3311063 इज द नंबर। हिम्मत नहीं भी हो तो एटलीस्ट झूठ मूठ कहीं यहाँ पर हाय हेलो और यस लिख दो, मैं हूँ आपकी दोस्त यार, मैं पढ़ लूंगी, मैं बिल्कुल जज नहीं करती किसी को। जबरदस्त हिट गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो बजरंगी भाईजान से। स्टे ट्यून और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

देखिए यार, पार्टी का तो पता नहीं लेकिन जबरदस्त इवनिंग जो है आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं आपकी कशिश के साथ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर। शाहरुख की मूवी कभी अलविदा ना कहना से बहुत ही अमेजिंग वाला ट्रैक आपने यहाँ पर एंजॉय किया। एंड यार देखो, कभी अलविदा ना कहना वो मूवी है जिसे मैं टोटली बहुत अच्छी मूवी नहीं कह सकती। ऑफकोर्स करण जौहर की यू नो क्रिएशन है, इतने सारे अमेजिंग सुपरस्टार्स हैं इस मूवी में, लेकिन मुझे सबसे बुरी बात इस मूवी की अगर कोई लगी तो वो थी शाहरुख खान। नहीं, गुस्सा मत करना, मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ एंड इसीलिए कह रही हूँ कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग अगर कोई है तो वो शाहरुख खान है इस मूवी में। एंड इस मूवी के जैसा अगर आपको शाहरुख खान कहीं भी दिखे तो उससे बहुत दूर भाग जाओ, ठीक है। ये गुस्सा करता है, ये जो है इधर उधर सामान फेंकता है, ये चीट कर रहे हैं बेसिकली, सो ये टोटली रेड फ्लैग है। लेकिन अगर ग्रीन फ्लैग वाले शाहरुख खान को देखना है तो वो मूवी की लिस्ट जो है वो मैं आपको भेज दूंगी। लेकिन अभी शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि 24 दिसंबर को अपनी टिकट जो है वो बुक कर लो, क्योंकि किंग मूवी जो है वो रिलीज होने वाली है। एंड देखो, मैं तो जाने वाली हूँ। वैसे तो एवेंजर्स जो है उसकी भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो लॉन्च होने वाली है, मतलब मार्वल की मूवी जो है वो लॉन्च होने वाली है। सोचने वाली बात यह है कि किंग देखा जाए या वो देखा जाए, लेकिन मैं तो कहूँगी कि किंग देखना ज़्यादा बढ़िया है। फिलहाल हर लड़की के सपनों का गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। यस, अगर जो है आप लड़की हैं तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर सलाम इश्क मूवी से ये ट्रैक एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर। 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026। कम्युनिकेट, कनेक्ट एंड कॉन्कर।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
3: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिस्निंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो वाले पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है. अब देखो यार, इस गाने में अगर आप कैटरीना कैफ को देखें, सूर्यवंशी मूवी जो मतलब अभी रिसेंट पास में आई थिंक कैटरीना की लास्ट मूवी ही थी, वन ऑफ द लास्ट मूवीज थी, शादी के पहले उन्होंने वाली मूवी की थी एंड इतनी ज़्यादा अमेजिंग, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है वो इस मूवी में. पर कुछ लोग अभी जो रिसेंटली उनकी कुछ पिक्चर्स इंटरनेट पे आई हैं उसके बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं कि यार वेट पुट ऑन कर लिया है, ये कैसी लग रही है कैटरीना. यार अभी अभी उन्होंने एक बेबी डिलीवर किया है, ओके, सो आप उन्हें जज नहीं कर सकते, पर फिर भी सोचो उस इंसान के चेहरे पर कितना नूर है, कितनी यू नो कितनी बढ़िया लग रही है वो, कितनी खूबसूरत लग रही है. एंड विकी कौशल एंड कैटरीना की जोड़ी अमेजिंग लग रही है. तो जितने भी लोग ट्रोल कर रहे हैं ना उनको मैं कहना चाहती हूँ कि यार देखो, वजन तो घटता बढ़ता रहता है लेकिन टैलेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है. एंड कैटरीना ने बार बार ये चीज़ प्रूव की है कि उन्हें एक लैंग्वेज में जो है वो प्रोफिशिएंसी नहीं है, यानी वो अच्छे से एक लैंग्वेज नहीं बोल सकती. और उसके बाद भी एक यू नो हिंदी डोमिनेटेड, उर्दू डोमिनेटेड एरिया में उन्होंने अपना नाम बनाया है एंड दैट्स रियली अमेजिंग. और ऊपर से उनका जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड सच में वो अपना और इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल पर जो है आगे बढ़ा रही है. तो जितने भी ट्रोल्स हैं ज्यादा नहीं, ठीक है. फिलहाल जो है सारी गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पे, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर धमाल 4 का ये गाना एंजॉय कीजिए संजू राठौड़ की आवाज में. मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

बाजार मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ओलिव पर यो हनी सिंह की आवाज में। मैं हूँ आपकी गजेशन, आपके लिए जबरदस्त इवनिंग शो लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है।

अब हैप्पीनेस लाउंज में रेडियो ऑलिव के आरजेज और टीम आएंगे अपने अमेजिंग वाले फन फॉलिक मस्ती मजे गेम्स के साथ, जहां पर आपको जो है खेलने का मौका मिलेगा, जीतने का मौका मिलेगा एंड बेसिकली टीम बिल्डिंग एक्टिविटी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पूरी टीम हो जाएगी यू नो री एनर्जाइज एंड रिजुविनेट। सो देखो यार, अगर आप एक मैनेजर हो या एक बिजनेस ओनर हो तो देरी बिल्कुल मत करो, HL लिखकर जो है हमें मैसेज कर दो 3311063 पर। फिलहाल जो है जुगनी गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो और उसके बाद जेंजी डिकोडेड में आज का जेंजी स्लैंग जो है वो आपके लिए डिकोड करूंगी मैं।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: टाइम चेक
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 8:08. दैट इज 8:08. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
0: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
4: मैं हूं अनिल कपूर. रेडियो ओलिव यो बिंदास.
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
6: रेडियो ओलिव नंबर वन.
7: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
8: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

0: ताली जी ने जो है इस मूवी को जो है बनाया है, इस गाने को बनाया है, एंड कोरियोग्राफी में भी बहुत सारा उनका हाथ है। मल्टी टैलेंटेड इंसान, आई टेल यू। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी आज का जेंजी स्लैंग, जिसे हम जेंजी डिकोडेड में डिकोड करने वाली हैं। और मैं जो है वैसे इस स्लैंग के बारे में या इस चीज के बारे में पहले बात कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार क्यों ना इसे बताया जाए, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही फनी चीज हुई। सो जब मैंने लास्ट टाइम ये वाली बात आपको बताई थी कि जेंजी इस चीज को यूज कर रहे हैं, तब मुझे भी काफी हंसी आई थी, मैंने काफी मजाक उड़ाया था और मैंने ये कहा था कि यार ऐसा तो कौन करता है। लेकिन कल मैंने जो है किसी को ये जो है टेक्स्ट किया एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कशिश इस बात का तो तुम मजाक उड़ा रही थी, ये तुम खुद कैसे कर सकती हो। देखो जेंजीज ऐसे ही हैं, पहले किसी चीज का मजाक उड़ाते हैं और फिर वो जब ट्रेंड में आ जाता है तो उसे यूज करने लग जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉल्फिन वाले इमोजी को। अब आपने अगर कभी डॉल्फिन को हंसते हुए सुना है, मतलब ऑडियोज में वीडियोज में अगर सुना है, तो आपको समझ आएगा कि उसकी जो साउंड है वो जब हम बहुत ठहाके लगा के हंसते हैं ना वैसी आती है। अभी यूट्यूब पे जाओ, डॉल्फिन साउंड जो है वो सर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब जेंजीज जो है लाफिंग वाले इमोजी की जगह, यानी हंसने वाले इमोजी की जगह डॉल्फिन वाला इमोजी भेज रहे हैं। एंड पहले मुझे लगा यार इट्स जस्ट फॉर फन, ये सिर्फ ऐसे ही वायरल होने के लिए लोगों ने किया है। बट मैंने खुद जब मुझे ये दिखाना था कि यार मैं बहुत ज़्यादा हंस रही हूँ, इतना हंस रही हूँ कि मेरा पेट दुख रहा है, तो मैंने जो है ये वाला इमोजी भेजा एंड सामने वाला झट से पहचान गया। तब मुझे लगा यार ये इमोजी तो बहुत काम का है। सो कभी कभी जो है चीज़ें पहले हमें शुरू शुरू में वियर्ड लगती हैं, लेकिन फिर वो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं। वैसे ये नई चीज़ों के साथ काफ़ी ओल्ड स्कूल चीज़ें जो है वो भी अब वापस आ रही हैं। मेरी मम्मी का पुराना वार्डरोब जो है वो मैंने पूरा खाली कर दिया है एंड उसमें से सामान जो है वो चुन लिया है कि मम्मी ये चीज़ जो है वापस इन फैशन आ चुकी है, ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो। क्या कभी आपने ऐसा किया है, ज़रूर बताइएगा मुझे 3311063 पर। फिलहाल गाना जो है ओल्ड स्कूल वाला सुन लेते हैं आपके रेडियो सेट्स पर, ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए आपकी के साथ कूल सॉन्ग ऑफ द आवर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास
1: ओसम रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ओसम।

गाने का नाम कुछ ना कहो लेकिन ऐसे कैसे चलेगा, मेरा काम ही कहने का है और आपका काम है सुनने का। बस प्यार से बैठिए, सुनते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा और वक्त है हमें साथ में बिताने के लिए। अब वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का भी डेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नासुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी कि जब भी आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आप अक्सर जो है फ्री हैंड जाना चाहते हैं, वॉलेट नहीं लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी QID जो है वो हर वक्त जो है अपने साथ कैरी करनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने जो है एक यू नो फ्रेंडली सा रिमाइंडर आप सबको दिया है कि QID हमेशा आप अपने साथ कैरी करें, ये आपके लिए सही रहेगा। मतलब बेसिकली कभी भी कोई आता है आपसे पूछने के लिए कि यार अपनी QID आप दिखाइए, सो जब तक वो कोई ऑफिशियल ना हो तब तक आप जो है अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। बाकी बस इसी बात के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मोहित चौहान का एक गाना हमें एंजॉय करना चाहिए, ऑल टाइम फेवरेट मूवी रॉकस्टार से हवा हवा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस इस गाने के पीछे जो है एक बहुत ही गहरी कहानी है। सो अब मैं अभी जब आपको ये गाना सुनाऊंगी ना, तो आपको ये गाना ध्यान से सुनना है। सो इस गाने में एक स्टोरी चल रही है एक रानी के बारे में। सो वो जो रानी थी वो जो है अपनी साथ आई थिंक उसके फादर या उसके हस्बैंड से छुप कर जो है रात को कहीं जाती थी, एंड उसके जो है जूते जो है जब वो सुबह सोती थी तो मतलब जब शाम को सोती थी तो बिल्कुल ठीक होते थे, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठ के देखते थे बाकी सब लोग तो उसके जूते जो है वो घिसे हुए रहते थे, यानी नीचे से जो है उनमें मिट्टी लगी होती थी एंड वो पूरी तरीके से फिर से पहनने लायक नहीं होते थे। सो क्या हुआ कि एक जासूस को उसके पीछे लगाया गया, एंड फिर जो है सबको पता चला कि ये जो रानी है ये रात को उठ के कहीं तो जाती है, एंड उस कहानी के आगे जो है वो आपको पता चलेगा हवा हवा गाने में। सो इस गाने का वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए, एंड इस बार लिरिक्स पर ध्यान दीजिएगा म्यूजिक के साथ साथ। मोहित चौहान की आवाज में रॉकस्टार मूवी का ये ट्रैक हवा हवा आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए। आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए सी ओपन दास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

देखिए जी, नाचो नाचो करते हुए नाचना तो बनता था, बिकॉज ये दिन बीत चुका है एंड अब हमने सक्सेसफुली ये दिन पार कर लिया है। कल का दिन जो है वो वापस शुरू होगा एक नए चैलेंज के साथ, लेकिन हम सब कुछ कर लेंगे, कोई बात नहीं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, मेरे साथ आप जबरदस्त इवनिंग इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया। सो मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना एंड मुझे जो है याद करते रहना। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप सभी आरजेएस को जाके जो है फॉलो कर सकते हैं, हमसे बातचीत जारी रख सकते हैं। फिलहाल जाते जाते आपको ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनाते हुए जा रही हूँ, ये आवारा पन, एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
3: किनिया किनिया गल्ला वे तू कर दा।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

106.3 FM, Geo Bindas.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.